गली में आज चांद निकला, बेहद खूबसूरत गाना। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत होती है यादें। बचपन की यादें, अपनों की यादें कभी मुस्कान बन जाती हैं तो कभी आंसू ले आती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये यादें ही तो हैं जो हमें अपनों से हमेशा जोड़ कर रखती हैं। और इसी एहसास को कुछ अल्फाजों में कह दिया गया है कुछ इस तरह। जी हाँ, सुनाना चाहूँगी आपको ये दो लाइनें। याद के झोंकों से रोशन है दिल का चमन, बचपन हो या अपने, यादें कभी पुरानी नहीं होती। तो चलिए प्रोग्राम का एक अगला सॉन्ग सुनते हैं, रुक जा ओ दिल दीवाने। जी हाँ, ये भी मेरी और शायद हम कुछ लोगों की यादों में बसा है ये गाना, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएगा। यहाँ शाहरुख खान और काजोल इस फिल्म में नज़र आए थे और बेहद ही पॉपुलर मूवी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना था। इसे सुनते सुनते आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा, मुझे तो याद आ गया। चलिए सुनते हैं ये वाला गाना।

दोस्तों, शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो लगभग 3 दशकों से बॉलीवुड का दिल धड़कन बन चुके हैं। रोमांस के बादशाह, एक्शन के किंग और एंटरटेनमेंट के असली सुपरस्टार। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और लगन से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। और अब बारी है उनके बेटे आर्यन खान की। लेकिन आर्यन ने अपने पापा की तरह एक्टिंग नहीं, बल्कि एक नया और चैलेंजिंग रास्ता चुना है, डायरेक्शन का। हाँ जी, आर्यन खान ने अपनी पहली वेब सीरीज डायरेक्ट की है, जिसका नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये एक डार्क कॉमेडी है दोस्तों, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपी असली दुनिया और उसके ग्लैमर के अंदर का स्ट्रगल, कंपटीशन और सच्चाई। इस सीरीज को आर्यन ने खुद लिखा है, डायरेक्ट किया है और नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, यानी कि वो कल हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है, यानी कि अपने घर के ही प्रोडक्शन हाउस से। आर्यन के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया सफर है दोस्तों। उन्होंने खुद कहा है कि डायरेक्शन में हर एक डिटेल मैटर करती है, शॉर्ट एंगल से लेकर सीन की फील तक। और वही डिटेलिंग उन्होंने इस डेब्यूट में डालने की कोशिश भी की है। तो चलिए, ज़रूर देखने के लिए बनती है ये। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जी हाँ, जो कि मैंने बताया, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। चलिए चलते हैं अपने अगले गाने की ओर और फिर बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड के बारे में।

0: दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो शहद की तरह कानों में घुल जाते हैं, जैसे चांदनी फिल्म के गीत। जी हाँ, हर एक धुन, हर एक बोल दिल को छू जाता है ना। और इस जादू के पीछे है शिव हरि जैसे महान संगीतकार, जिन्होंने हर सुर को एक नया रंग दिया। चांदनी के गीत तो जैसे मोती हैं, एक से एक अनमोल, जो आज भी सुनने वालों के दिल को उतनी ही ताजगी से महका देते हैं जितना पहली बार सुनने पर महकता था। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मिलती हूँ आपसे। सुनते रहिए 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा, रिचा के साथ।
1: तू मेरी चांदनी,
2: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करे।
0: भैरवी किचन है ना,
2: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो।
0: अरे भैरवी किचन है ना,
2: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
0: भैरवी किचन है ना,
2: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
0: पैरा हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
2: और फोन नंबर
0: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक।
3: आप सुन रहे हैं हिंदी प्रसारण फ्राइडे विद रिचा 103.1 FM पर।

0: This is Friday with Richa at 103.1 FM.
1: तो दोस्तों, ये था फैशन का जलवा, एक ऐसा गाना जो एनर्जी से भरपूर है और इस गाने को अपनी दमदार आवाज से और भी खास बनाया है सुखविंदर सिंह ने। उनकी आवाज सिर्फ एक सुर नहीं है बल्कि जज्बात हैं। उनके गाने सुन के दिल में एक नई ताजगी और जोश आ जाता है। छैया छैया से लेकर जय हो तक उनका हर एक गाना एक तोहफा है और उनके चाहने वालों के लिए जी हाँ एक जबरदस्त सरप्राइज भी होता है। उनकी मेहनत, उनका टैलेंट और उनका जुनून ही उन्हें एक असली रॉकस्टार बनाता है। शुक्रिया सुखविंदर।